जीएल फूड्स को उत्कृष्ट उत्पादन बुलबुल ब्रांड का मसला खुर्सानी बेसार मीट मसला मोमो मसला मरीच मसला जीरा पाउडर धनिया पाउडर र दालमोठ सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।

0: कालिका ट्राफिक अपडेट।
1: कालिका ट्राफिक अपडेट को साथमा
2: ठुक्क साथ व्यापार व्यवसाय गर्न, आर्थिक जोखिम कम गर्न विश्वास हामीलाई गर्नुस्। युनाइटेड अजुर इन्स्योरेन्स, युनाइटेड बाई ट्रस्ट।

0: जीएल फूड्स को उत्कृष्ट उत्पादन बुलबुल ब्रांड का मसला खुर्सानी बेसा मीट मसला मम मसला मरीच मसला जीरा पाउडर धनिया पाउडर र दालमोट सर्वत्र बजार में उपलब्ध छ।
1: 95.2 कालिका एफएम हृदय को स्पंदन।

0: स्टुडियो टाइम चेक यो समय
1: जोर्नी पुनर्स्थापनामा समर्पित एवं स्त्री प्रसूति तथा निसन्तानपन सम्बन्धी समस्याको उपचार वरिष्ठ महिला विशेषज्ञ डाक्टरबाट गरिने समिट हेल्थ केयर हस्पिटल प्राली भरतपुर 9 केन्द्रीय बस पार्क चितवन।
2: उच्च शिक्षा दिनको लागि जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, साउथ कोरिया, युरोप लगायतका देशहरूमा जानु परेमा आईएसपीटी कोरियन अङ्ग्रेजी भाषा कक्षा लिनु परेमा सेन्ट्रल एजुकेसन एन्ड माइग्रेसन सर्भिसेस प्राली भरतपुर ओह्रालो नारायणगढ।
3: It's 12 a.m.

को सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका फार्म 95.2 यति बेला हामी छौ शुभरात्री प्रहरमा। शुभरात्री प्रहर अन्तर्गत अब सुन्न सक्नु